हर दिन रैन कीर्तन गाये, बहुड़ न जोनी पाये। जिस देवे पुरख बेदाता, हर रस तिन ही जाता। जम

हित वार ना जोगी जाना रुत माहु ना कोई जागरता सिर ठीक हो साजे आपे जाना सोई क्यों करे आखा गंसाला ही क्यों वरणी बजाला नानक आखन सबको आखा एक दू एक सियाणा वड्डा साहेबा वड्डी नाई की

जग श्री भगवान को भेद ना पायो। चौपाई साहेब एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेओ बार में ती चौपाई हमरी करो हादर चा पूर्ण हो ये चरकी चा तव चरण मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुख सभा तुम गावो आप हादा महे बचावो सुखी बसा मोरो परिवारा सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा नहीं करदा करिया सभा रण गावा संगरिया पूर्ण हो ये हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तमें शाड़ कोई अवर न चाहूं जो बार चाहूं सो तुम दे पाऊं सेवक सेखा

धीराय अंदर पाया अंतुरा पाया कन धीरा आपना आप तू जाने जी अजन सब खेल धीरा काकू आप खाने आखा तामिका सब तू है दिन जगतो पाया।

हमारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, रखो रखनहार दयाला, नानक करके गोले, होए सिफत खसम दी, नूर अर्शों कुरसों चटिए, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए, वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपाल हो, हम बारिक तुमरे तारे, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपाल हो, हम बारिक तुमरे तहारे।

तेरो अंत न किन्ही लहिए रहाओ। कोट पराध हमारे खंडो अनिक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले। रखो रखनहार दयाला नानक करके गुले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले।

उत्तरे सकल विसूरे दुख रोग संताप उत्तरे सुनी सची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भर पूरे बिनवंत नानक गोरे चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भर पूरे बिनवंत नानक गोरे चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे।

सुध है सेव पई तिन थाए। हर गुण गावै हर नित पढ़ै हर गुण गाए समाए। नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए। श्री राग महला तीजा जिनी एक मन नाम त्याया। गुरमति विचार तिनकै मुख सद उजलै तित

हर हर सदा त्याय मलहों में कढ़ै धोए रहाउ। मनमुख नाम न जाननी बिन नावै पत जाए, शब्द साध न आयो लागै दूजे पाए। विष्टा के कीड़े पवै विच विष्टा, से विष्टा माहे समाए। तिनका जन्म सफल है जो चलै सतगुर पाए, कुल उधारै अपना धन जनिंदी माए। हर हर नाम त्याई जिसनों कृपा करे रजाए, जिनी गुरमुख नाम त्याया विचो आप गवाए। ओए अंदरों बाहरों निर्मलै सच्चे सच समाए, नानक आए से प्रवाण है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा हर भगता हर धन रास है, गुर पूछ करे वापार। हर नाम सलाहन सदा सदा वक्र हर नाम आधार।

गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, जोती जोत मिलाई। सतगुर की सेवा अत सखाली, जो इच्छा सो फल पाए। जात सात तप पवित शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहे दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति हो, तिन कै बल जाओ। दर सच्चै सच्ची वड्याई, सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाई है गुरमुख, मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणै, ज्यो दुहागण तन सिगार। सेचै कंतना आवई, नित नित होए खुआर।

संता संगत मिल रहा है, जप राम नाम सुख पाए रहाओ। गुरमुख सदा सोहागणी, पिर राख्या उर तार, मिठा बोलै निप चलै सिजे रवे पतार। सोभावंती सोहागणी, जिन गुर का हेत अपार। पूरे भाग सतगुर मिलै, जे भागे का उदो होए, अंतरों दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए। गुर कै भाणै जो चलै, दुख ना पावै कोए। गुर कै भाणै विच अमृत है, सहजे पावै कोए। जिना प्राप्त तिन पिया, होमै विचो खोए। नानक गुरमुख नाम त्याई, सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा, जा फिर जाने अपना, तन मन अग्गै तरे। सोहागणी कर्म कमाव दिया, सही कर्म करे। सहजे साच मिलावड़ा, साच बड़ाई दे। पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई, जे लोचै सब कोए रहाओ। लख चौरासी फेर पया, कामण दूजे पाए। बिन गुर नींद न आवई, दुखी रहन विहाए। बिन शब्द पिर ना पाई है।

आओ। कर कृपा घर आया आपे मिलया आए, गुरसबदी सालाही है रंगे सहज सुपाए। सच्चे सच समाया मिल विछड़ मिल वि सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए। जो किश करना सो कर रहया अवर न करना जाए। चिरी बिशुन्य मिलियन सतगुर पन्ने पाए। आपे कार कराए सी अवर ना करना जाए। मन तन रत्ता रंग स्यो होमै तज बेकार, अहनस हृदय रब रह निरपौ नाम निरंकार। नानक आप मिलायन पूरै शब्द अपार, श्री राग महला तीजा। गोविंद गुणी निदान है अंत ना पाया जाए। कथनी बदनी ना पाई है होमे विचो जाए। सतगुर मिलिए सद पैरचै आप वसै मन आए। पाई रे गुरमुख बूजै कोए, बिन बूजै कर्म कमावणै जन्म पदार्थ खोए। रहाओ जिनी चाख्या तिनी साध पाया, बिन चाखै भरम पुलाए। अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए। पीवत हूँ परवान पया पूरे शब्द समाए। आपे देता पाईए होर करना किशु ना जाए। देवन वाले के हथ दात है गुरु द्वारे पाए। जेहा कीतो नो तेहा होआ जेहे कर्म कमाए। जात सात संजम नाम है विण नावै निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै सब मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा नावै निर्मल होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा हर गुण पावै सोए। श्री राग महला तीजा। काया साधै उर्द तप करै विचों होमै न जाए। अध्यात्म कर्म जे करै नाम न कभी पाए। गुर कै शब्द जीवत मरै हर नाम वसै मन आए। सुन मन मेरा भज सतगुर सरणा, गुर प्रसादी छुट्टी है बिख भव जल शब्द गुर तरणा। रहाओ त्रै गुण सबा तात है दूजा पाओ विकार। पंडित पड़ै बंधन मो बाधा, नै बूजै बिख्या प्यार। सतगुर मिलिए त्रिक

आवै परे अपना सहजे सच समाए रहाओ। शब्द रतियां सोहागणी सच्चे शब्द सीगार, हर वर पायन कर अपने गुर कै हित प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवै भगत परे भंडार, सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सबसे दे आधार। फिर सलाहण अपना तिनकै होसद बलहारै, जाओ तन मन अर्पी मन तन अर्पी सिर देई तिनकै लागा पाए। जिन्नी एक पछाणिया दूजा भाउ चुकाए, गुरमुख नाम पछाणिया नानक सच समाए। श्री राग महला तीजा हर जी सच्चा सच तू, सब किश तेरे चीरै लख चौरासी तरस दे, फिरै बिन गुर भेटै पीरै। हर जियो बख्सै बख्स लै सुख सदा शरीरै, गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीरै। मन मेरै नाम रते सुख होए, गुरमति नाम सलाहियै दूजा अबर ना कोए रहाओ। धर्म राय नू हुक्म है बै सच्चा धर्म विचार, दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओहो तेरी सरकार। अध्यात्मी

राम पछाणिया सहजे नाम सम्मान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाईऐ मन मुख फिरे दीवान। शब्द ना चीनै कथनी बदनी करे बिख्या माहे समान। सब किश आपे आप है दूजा अवर न कोए। जो बुलाए त्यो बोलिए जा आप बुलाए सोए।

न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रेथाम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण दयाईया जह डिठे सब दुख जाय। तीक बहादुर सिमरिया करणौन दया बताई सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय।

वाहिगुरु का सतगुर प्रसाद किरत कर्म के भी छुड़े कर कृपा मेलो राम चार कुंट दैद ब्रह्म में थके आए प्रभु की साम तेन दु देते बाहरी किते नया वे काम जल बिन सा कुमलापती उपजे नाही दाम हर नान न मिलिए साजने कत पाइए विश्राम जित कर हर कंत न प्रगटी पढ़न गुर सेक राम श्राब सिंगाल तंबोल रस सण दे ही सब काम प्रभु स्वामी कंत बिहूणी अमीर सजन सब जाम नानकी बेनंती आ कर कृपा दीजै नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका ने चलता चेत गोविंदी अराधी है होवे नंद कणा संत जना मिल पाइए रसना नाम पणा जिन पाया प्रभु अपना आए तिसे गणा इखन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल मैयल पूरिया रविया विच बना सो प्रभु चितन आवि कितड़ा दुख गणा जिन्नी राविया सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन को मन लोच द नानक प्यास मना चेत मलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा विसाख तीरन क्यों वाढ़ी अजिन्ना प्रेम बिशो हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो पुत्र कलत न संगत न हर अवनासीओ पलच पलच सगली मुई झूठे धंधे मो इक्स हर के नाम बिन अगे लईए खोए दई विसार बिगुचना प्रभु ने अवर न कोय प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए नानक की पर बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए विसाख सुहावा ता लगै जां संत पेटै हर सोए अड़जेड़ जुड़न दा लोड़ीऐ जिस अगे सबन वन हर सज्जन दावण लग्या किसे न देई बन माण मुक्ति नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सवे नारायण जेते मन पवन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रवन साधु संग प्राप्त नानक रंग मनन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिस कै पाग मथन असाड़ तपंदा तिस लगै हर नाह न जुन्ना पास जग जीवन पुरख ते आके मानस संधी आस दोए पाए बगुचिए गल पई सुजम की फास जे हा बूजे सो लुणे मथे जो लिखियास रैण बिहानी पछू ताणी उठ चली गई निरास जिनको साधु पेटिए सो दरगाह होए खलास कर कृपा प्रभु अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभु तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असाड़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मंतन रत्ता सच रंग इको नाम आधार विख्या रंग कुड़ा बिया दिसन सभ्य शार हर अमृत बूद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तिन प्रभ संग मौलिया समरथ पुर के पार हर मिलने नो मन रोच द करम लावन हार जिन सखिए प्रभ पाया हो तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारण हार साबुण तिना सुहागणी जिन राम नाम रहार पादुए परम पुलाणिया दूजे लगा हेत लख शंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिंससी तित वेले कैसन प्रेत पकड़ जलायन दूत जम किसे न देनी भेत छट कड़ो तेखने माहे जिन सो लगा हेत हथ मरोड़े तन कपे स्याहू हुआ सेत जे हा बीजे सो लुणै करमा संदड़ा खेत नानक प्रभ शरणागति चरण बोध प्रभ देत से भादु नरक न पाइयें गुर रखण वाला हे असन प्रेम्यो माहड़ा क्यों मिलिए हर जाए मंतन प्यार दर्शन कणी कोई आण मिलावे माए
ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋ ਤਿਨਕੇ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ ਬਿਣਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ।